बॉडी रखी हो तो हत्ता ये भी नहीं लोग कहते ये मेरा बाप है, कहते हैं मैयत है, मैयत है। क्या मतलब इसका? टाइटल्स खत्म हो गए, अब ये डेड बॉडी है, खत्म हो गया मामला। ये हमारी रियलिटी है। अगर हमारी रियलिटी हमारी बॉडीज हैं, इन्होंने तो खत्म हो जाना है, इससे हम डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। मसलन जब मैं मरूंगा इंशाअल्लाह, तो क्या मैं उस डेढ़ गज के गड्ढे में हमेशा बाकी रहूंगा? नहीं, वहां पे मेरा जिस्म होगा जो अगर खुदा ने चाहा तो शायद वो भी बाकी रखेगा, अगर खुदा ने चाहा, मैं वहां पे नहीं होऊंगा। निशानी के तौर पे खुदा बाकी रख ले, ये एक अलग मामला है। अल्लाह मोमिन के बदन को भी बाकी रखता है। हत्ता कराची के अंदर कुछ कब्रों में से मोमिनों की जो 10-10 साल पहले फौत हुए थे, सालिम सही और सालिम लाशें निकले हैं। ये हुआ तो मोमिन की जिस्म को खुदा बाकी रखता है, ये एक अलग मामला है। लेकिन क्या वो शख्स वहां पे होता है? नहीं, वहां पे नहीं होता, वो कहीं और होता है। असल इस दुनिया में नहीं होता, इस दुनिया से ऊपर किसी और दुनिया में होता है। आपकी हकीकत क्या है फिर, इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, ये मुझे एहसास है कि मैं जितना भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये गुफ्तगू सिर्फ गुफ्तगू है। यहां से बाहर निकलेंगे फिर सिर्फ वही है जो आईने में नजर आ रहा है, और अपने जहन को बता रहे होंगे कि यही सब कुछ है, जबकि सबको मालूम है कि ये सब कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो जो असल में है वो क्या है? और आपने कभी एक्सप्लोर किया कि वो है क्या और किस हालत में है इस वक्त? तो मैं अपने अंदर इस बात को यकीन के हद में देखता हूं, मुझे यूं लगता है कि शायद हर इंसान को मरने से पहले अपनी बरज़ख को पहचानने का कोई ना कोई मौका मिल जाता है हर इंसान को। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि ये असल में होने वाला है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। कुछ लोग ख्वाब में देखते हैं, कुछ लोग जागते में देखते हैं, लेकिन हर इंसान को कहीं ना कहीं ये मौका मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट करूंगा, इसको इसके ऊपर मेहनत कर लीजिए। वैसे भी वीकेंड है, अच्छा है। आपकी मेरी जो हकीकत है वो इस वक्त किस हालत में है? अभी ना मैं हूं ना आप में से कोई नॉन पर्सन ऐसा है जो मुझे ये देख के बताए कि तुम्हारी बरज़खी शक्ल है क्या। अननोन शायद कोई बैठा हो यहां पे जिसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नॉन में नहीं है। तो क्या हमारी बरज़खी शक्लें वही हैं जो हमें आईनों में नजर आ रही हैं? नहीं, खतअन नहीं। तो थोड़ा बहुत अपने आप को संभालने की जरूरत है कि ये जो असल में है ये क्या हो रहा है। मैंने काफी इस पर इसरार किया, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लाइफ के नजदीक लाता हूं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने आपने कुछ चीजें इशारों में सुनी है, तो मिसाल के तौर पर आपने शायद कभी सुना हो कि उस शख्स में बहुत नूरानियत है, कभी सुना हो शायद। आप रिवायतों में इसका इसरार बहुत ज्यादा है। यानी हमारे पास एक बहुत मशहूर रिवायत है जिसमें मौला छठे सरकार ने बयान फरमाया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, फरमाया कि मैंने फना चीज चाही तो उसे कहाँ पाया। 10-12 जुमला इमाम ने बयान फरमाया, उनमें से एक जुमला था कि मैंने कल्ब की नूरानियत अल्लाह के सामने रोने और सोचने समझने में पाई है। कल्ब की नूरानियत। पिछली दफा जब हाजिर हुआ था तो मैंने कल्ब के ऊपर 1-2 दिन पढ़ा था। अब उसको तकरार करना भी अच्छा नहीं है कि फिर वो रिपीटेशन हो जाएगी, बिल्कुल गुजर जाऊं उसी पर रेफर करते हुए जो शायद मैं भी भूल चुका हूंगा, तो बाकी लोग कहां याद रखे हुए होंगे। कल्ब इंसान के अंदर एक फैकल्टी है, एक हिस्सा है, फिजिकल पार्ट नहीं है। एक तो ये हमारा दिल है, एक अलहदा मामला है। अरबी में जिसको कल्ब कहते हैं वो ये दिल नहीं है, ये आपकी एक स्पिरिचुअल पोजीशन है

स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से आप रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ये आपकी रूह के अंदर है। बस आपकी रूह की एक हैसियत है, उसका नाम कल्ब है, और उसके जरिए से आप जो कायनात की हकीकतें होती हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। हर एक का कल्ब मुख्तलिफ होता है, 100% बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके आमाल पे, उसकी नियतों पे। बस अगर किसी के आमाल बहुत अच्छे हुए, नियत बहुत अच्छी हुई, उसने मेहनत की हुई, तो उसका कल्ब इंतहाई नूरानी होगा। अगर कल्ब नूरानी होता है तो क्या होता है फिर? अगर कल्ब नूरानी होता है तो दो चीजें हासिल होती हैं। एक तो यह कि उसको वो रियलिटीज समझने को मिल जाती हैं जो दूसरे नहीं समझ पाते, ये खुदा देता है। दूसरी बात यह कि जब भी जिंदगी में गाइडेंस, हक और बातिल का मामला आता है, इसको पता होता है कि हक कहां पर है। नूरानियत का यह फायदा होता है। तो यह हक और बातिल को तशखीस दे सकता है, और हक का साथ देने की इसके अंदर ताकत होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके कल्ब में नूरानियत है। ये हमारी रियलिटी है। बस हमारी कोर रियलिटी हमारा ब्रेन नहीं है, हमारा ये दिल नहीं है, हमारी बॉडी नहीं है, हमारी कोर रियलिटी हमारी रूह है। और उस रूह के अंदर जो सबसे ज्यादा डिग्निफाइड एस्पेक्ट है वो उसका कल्ब है। और कल्ब कहां से आता है? कल्ब आमाल से आता है, नियतों से आता है। खुदा न करे, नाऊज़ु बिल्लाह ताला, अगर मैंने अपने अंदर वो सिफतें देखी हैं जो खुदा के दुश्मनों में होती हैं, नाऊज़ु बिल्लाह ताला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा कल्ब तारीख होगा। अगर कल्ब तारीख होगा तो मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जो सुपीरियर रियलिटीज दूसरों को समझ में आती हैं और कनेक्ट कर पाते हैं, मैं नहीं कनेक्ट कर सकता, मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा। इसका एक और मसला यह है कि जब किसी मामले में हक और बातिल का झगड़ा हुआ तो मेरे पास ये ताकत नहीं होगी कि मैं समझ पाऊं हक कहां पर है, बातिल कहां पर, तो मैं शक में रहूंगा। बस इल्म नूरानी कल्ब की मीरास है। इल्म जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करवाए, ये नूरानी कल्ब की मीरास है। अगर कल्ब नूरानी नहीं हुआ, शक हुकूमत करेगा, फैसला भी नहीं कर पाएगा। मैं एक और सादा सी मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि आपने कभी सुना है कि कोई ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि फला काम करूं लेकिन नहीं कर पाता? मैं सुनता हूं, बहुत कहते हैं। हत्ता कोई यहां तक कहता है कि मौलाना, ये प्रैक्टिकली हुआ है, मैं सर मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, प्रैक्टिकली ये कहा है, मौलाना मैं सुबह को उठता हूं फजर के वक्त पे, मुसलसल अपने आप से कहता रहता हूं मुझे नमाज पढ़नी है, और मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। तो मैंने कहा कि ताज्जुब है कि अगर कोई ये कहे कि मैं सुबह को उठ नहीं पाता और नमाज नहीं पढ़ता, ये तो बात समझ में आती है, ऐसे तो बहुत है। ये कि उठ भी पाए फिर भी ना पढ़ पाए, अब ये कोई सादा कहानी नहीं है, ये कुछ और ही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके कल्ब में कोई ऐसी मुसीबत घुसी हुई है जो इसको हत्ता वो नहीं करने दे रही जिसके सही होने का इसको 100% यकीन है। इसका इरादा खत्म हो चुका है। अगर आप कभी ये देखें ना कि आप एक अच्छे काम का इरादा कर रहे हैं और इरादा इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, इसका मतलब है अंदर कोई प्रॉब्लम है, अंदर कोई प्रॉब्लम है, वरना क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि बाकी जगहों पे कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर कोई मुझसे कहता है मौलाना मैं अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ पाता, तो मैं उससे पूछता हूं तुम जॉब पे सही टाइम पहुंच जाते हो? और वो कहते हैं हाँ पहुंच जाता हूं। इसका मतलब है मसला टाइम मैनेजमेंट का नहीं है, इसका मतलब है ये मसला कल्ब मैनेजमेंट का है। ये कल्ब की मैनेजमेंट का इशू है, ये टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है इसका। ये आपकी हकीकत है, ये मेरी हकीकत है। मुझे और आपको ये देखना है ये हकीकत बेहतर कैसे होती है, ये मुझे और आपको देखना है। अच्छा, ये जो हकीकत है, अब मुझसे इशारतन कह रहे हैं वाकई यहां पे काफी जगह है, अभी अभी तो नहीं मालूम शबे आशूर तक जाते जाते क्या

भी आपको मौका मिले अपनी जिंदगी में बैठ जाइए सुकून से। कल शायद मौका मिल सकता है, आज बड़ा तो मौका मिल सके। अपने अंदर लिस्ट करें कि मेरे अंदर अल्लाह की कौन सी सिफतें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। खुदा सादिक है, मेरे अंदर सच्चाई कितने फीसद है। अच्छा मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मेरे अंदर सच्चाई 40% है तो 40% खुदा का कलर मेरे अंदर है। सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिन अल्लाह सिबगतन, इसको कहते हैं खुदा का रंग। तो अगर मेरे अंदर 40% सच्चाई है तो 40% मेरे अंदर खुदा ने मुताल की सिफत है, बदकिस्मती से 60% कुछ और है। इसके ऊपर तय करूं कि इमाम की नुसरत करूंगा या नहीं करूंगा तो स्कोर खराब है, स्कोर खराब। सही है, ये एक सिफत हो गई। अब मैं एक और आता हूं, रहमदिली मेरे अंदर कितनी है, रहमदिली में मेरा स्कोर क्या है। एक हो गई अदालत और इंसाफ, जस्टिस, मेरा स्कोर क्या है। अल्लाह की राह में कुर्बानी देना, मेरा स्कोर क्या है। अल्लाह की बंदगी को अंजाम देना, कैसा होता हूं मैं, कितनी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करता हूं। अगर आप ये कर लें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने वाला है अगर तब्दील नहीं किया, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और ये मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर चुका हूं, दोबारा अर्ज कर रहा हूं, इस पे मत रखिएगा कि जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी ना कि इमाम तशरीफ ले आए उस रात बैठ के मैं सही कर लूंगा, ये नहीं होगा, ये उससे पहले होना है। क्यों, मैंने आज कर दिया है, उस वक्त स्पॉन्टेनियसली हम लोगों ने फैसले करने होंगे, वो हम नहीं कर रहे होंगे, वो पहले से हमारा स्टोरेज कर रहा होगा। यहां पर खुदा ने बहुत अच्छा मौका दिया है। ये जो हमारे सामने बार बार आशूर आती है, बार बार आशूर आती है, ये सिर्फ इसलिए नहीं आती कि हम हिस्ट्री को याद करें। हमारे सामने बार बार कैरेक्टर्स आते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर ऐसे थे, हुर ऐसे थे, और मसलन जुहैर बिन कैन ऐसे थे। ये कैरेक्टर्स क्यों आते हैं हमारे सामने बार बार, एक ही हिस्ट्री के पार्ट को बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। ये हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है, ये हमारा प्रेजेंट है जो रिपीट हो रहा है, जो हमारे फ्यूचर को तय कर रहा है। ये हमें इसलिए बताया जा रहा है, देखो पिछली दफा जब करबला हुई थी ना तो जिस हुर ने साथ दिया था वो ऐसा था, तुम बताओ तुम कैसे हो। पिछली दफा करबला में एक जुहैर ने साथ दिया था, वो ऐसे थे, तुम कहां खड़े हो। और मैं फिर दोबारा आखिर में कहूंगा, अगर कोई ये समझ रहा है ना कि ये सब बैठे बैठे सही हो जाएगा, बैठे बैठे तो जन्नत भी नहीं मिलती है। इमाम का साथ देना मिल जाए भूल जाओ, फिर तो बैठे बैठे नहीं होगा, इसको लेना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, इस पर जाने जाती हैं। तो हमें अच्छी तरह इसको सोचना पड़ेगा, ये काम कैसे होगा। कल मैं इंशाल्लाह इसको अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि आज मैंने हदफ के ऊपर काफी बात की आपकी खिदमत में, कल एक और मसले को अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो हमारे अहदाफ होते हैं ये हमारी सकाफतें तय करती हैं, कल्चर। हमारे पास एक सिविलाइजेशन वर्ड है, टर्मिनोलॉजीज में एक कल्चर है। एक कल्चर वो होता है जो सोसाइटी में होती है, एक कल्चर वो होता है जो इंसान के अंदर बसा हुआ होता है। सही, इसको हम कल इंशाल्लाह थोड़ा अर्ज करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तर क्रिटिसिज्म के बाद एक हकीकत है जिसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी और मेरी शख्सियतों के अंदर, ज़मीर के अंदर हुसैनी सकाफत मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मैं कैसा भी हूँ पर्सनली, लेकिन मेरे ज़मीर के अंदर, मेरी रूह के अंदर
میری فکر کے اندر،

कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम हर्ब है, अमीर मुआविया इब्न अबी सुफयान के लिए खत लाया हूं। अमीर अल मोमिनीन कहना काफी है, जाओ।

0: रुको,
1: खत लाया हूँ।
0: किसका?
1: हसन इब्ने अली का।
0: चलो।
2: उस रोज कि जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कि जिन पर खुदा का दुरूद व सलाम हो वफात पाई, तो मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैत की और मैंने ये ख़त तुम्हें इसलिए लिखा है ताकि मैं खुदा की बारगाह में माजूर रहूं। बातिल को छोड़कर राह हक का इंतखाब करो, सरकशी से दूर रहो और मुसलमानों का खून बहाने से परहेज करो। उम्मीद है कि खुदावंद आलम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत हमदिली ईजाद करे, लेकिन अगर तुमने किसी और रास्ते का इंतखाब किया तो मैं मुसलमानों के हमरा तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा और अपने और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए खुदा की बारगाह में पनाह लूंगा, इसलिए कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
3: यकीन नहीं आता कि मुझे इस तरह का खत लिखेगा।
2: क्यों यकीन नहीं आता?
3: देखो कैसी जुरत, अभी उसकी खिलाफत के चंद रोज भी नहीं गुजरे, अभी हुकूमत के पाए लरज रहे हैं। क्या तुम होते तो लिखते?
2: मैं तो नहीं, लेकिन वो लिखता है, इसलिए कि वो उसी बाप का बेटा है, अली इब्ने अबी तालिब का।
3: उसका बाप भी मुझे ऐसा खत ना लिखता।
2: क्यों नहीं, वो जरूर लिखता।
3: जरूर कोई पुश्त बना है जिसकी वजह से इतना निडर और बेबाक।
2: शायद ना भी हो।
3: क्या नहीं नहीं पड़ा, अलल ऐलान मुझे जंग की दावत दी है।
2: कौन कहता है तुम्हें इताअत की दावत दी है?
3: इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जानता है कि मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा।
2: पिसर अबू सुफियान, मेरी और तुम्हारी मुश्किल ये है कि हम उसकी सियासत को अपने मियार से देखते हैं। उसके बाप

0: अली के साथ भी हमारी यही मुश्किल थी। हमको ये मान कर चलना पड़ेगा कि हमारा और उसका तर्ज़ फ़िक्र बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम उसकी आइंदा की तदबीर के बारे में कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। वो ऐसा काम करता है जो हमारी नज़र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
1: ये माकूल नहीं है।
0: लेकिन फिर भी करता है। हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन हमें हसन इब्न अली को हल्के हाथों नहीं लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने एक और अली है, न कि एक नातजर्बेकार जवान।
1: ये नामा राज की तरह बेमोहरा रह जाए।
0: इस खत का गवाह सिर्फ वही कासिद है। मुमकिन है खत उसने पढ़ा हो।
1: तो इस खत की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए।
0: हाँ, तुम ठीक कहते हो।
1: किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा खत लिखने की जुर्रत की है।
0: वो कासिद जो ये खत लेकर आया है कहाँ है?
1: यही है। ए बोसर, उस कासिद को ले आओ।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: नाम क्या है तुम्हारा?
2: हर्ब सरदार,
0: कहाँ के रहने वाले हो?
2: ईरानी हूं।
0: कूफा में क्या कर रहे हो?
2: मुसाफिर था, ज्यादा सफर खत्म हो गया था। 10 सिक्कों के बदले ये खत शाम तक लाया हूं।
0: अगर मैं यहाँ नहीं होता और अमीर पढ़ना नहीं जानता तो तुम क्या करते?
2: उस खत को मैं पढ़ता।
0: तो तुम पढ़ना जानते हो?
2: हाँ,
0: तो तुम पढ़ना भी जानते हो। काबिले तवज्जो है, ईरानी अरबी जानता है।
1: तुमने इस खत को पढ़ा है?
2: नहीं अमीर।
1: सच कह रहे हो?
2: जी।
0: देखो, रस्ते में कोई वसवसा तो पैदा नहीं हुआ कि देखूं इस खत में क्या लिखा है?
2: नहीं।
0: अगर मैं होता तो जरूर वसवसा होता कि पढ़ूं क्या लिखा है इसमें।

0: ये हमसे कुछ छुपा रहा है।
1: शियों में से तुम्हें मेरा महल अच्छा लगा?
2: महल? मैं क्या कह सकता हूं अमीर,
1: ये कसरा से अच्छा नहीं है।
2: मैंने देखा नहीं।
1: हसन इब्ने अली का घर तो देखा होगा, बताओ कौन सा अच्छा है। दोस्त, कासिद को कैद होना चाहिए, इसकी तहकीक करो, कौन है क्या जानता है।
3: दरवाजा खोलो, सरदार आए हैं।
4: चल अंदर, चल चल।

0: चलो नीचे चलो। ए, किन कामों में लगे हुए हो?
1: मर गया।
0: मुंह बंद रखो, यहां पर जब तुमसे कुछ पूछा जाए उस वक्त मुंह खोलना।
2: नहीं मालूम तेरी आंखों में वाकई खौफ है या गुस्ताखी, जल्द ही मालूम हो जाएगा। इसे यहीं रहने दो, मैं खुद इससे निपटूंगा।
0: ताअत सरदार।
3: इसे थोड़ा पानी पिलाओ।
4: लो पानी पी लो। इसकी गलती क्या है? ये अमीर के 10,000 सिक्कों का मकरूज है, क्योंकि इसकी गलती से अमीर के एक सरदार का गुलाम फरार हो गया। नहीं, वो अमीर का सरदार नहीं है बल्कि कबीले का रईस है जिसका गुलाम फरार हुआ है। मुझे क्या मालूम गुलाम फरार हो गया, लिहाजा या तो गुलाम को वापस लाऊं या 10,000 सिक्के अमीर को दूं, या हर सिक्के के बदले कोड़ा खाऊं। अमीर बकता है, ये बेचारा तो यहाँ कैद में पड़ा है, गुलाम को कैसे वापस लाए?
3: मुझे क्या पता, क्या मैंने इसे कैद किया है?
4: ओ अल्लाह, मैं क्या करूं, तो मेरी मदद कर, मैं 10,000 सोने के सिक्के कहां से लाऊं?
5: इसके हाथ खोल दो, ये 1,000 तक पहुंचने से पहले मर जाएगा।
4: अभी तक इसने सिर्फ 150 कोड़े खाए और मैयत की तरह हो गया, और कहां 10,000 कोड़े।
3: इससे तो बेहतर है इसे जल्लाद के हवाले कर दिया जाए।
2: आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं हूं हरब इब्न अब्दुल्ला, वही गुलाम जो भाग गया था।
5: क्या कह रहे हो?
2: उठो, सिपाहियों को बुलाओ कि मुझे गिरफ्तार कर लें, अपनी जान बचाओ, चलो शोर मचाओ, देख नहीं रहे हो कि मैं वही गुलाम हूं? चलो सिपाहियों को बुलाओ।

0: फातमा दरवाजा खोलो।
1: मारो, मैं नहीं डरता। मैंने कहा था ना, मैं नहीं डरता।
2: सलाम अलैकुम। अमू कहाँ है? सलाम अलैकुम।
3: क्या कोई बात हो गई?
2: आपको गिरफ्तार कर लिया गया।
3: किस तरह?
2: जैसा कि मैंने सुना है, मुआविया के लिए अबा मोहम्मद की तरफ से नामा लेकर आया था और मुआविया ने हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए।
0: अबा मोहम्मद का कासिद
4: आखिर वो कूफा पहुंच गया।
0: अहमद सादिक की क्या खबर है?
2: मुझे कोई खबर नहीं।
3: उन्होंने क्या उसे पहचान लिया कि ये वही है?
2: उसे ना पहचाना जाता अमूजान, काश उसे ना पहचाना जाता। बदकिस्मती से उसको ऐसे जिंदान में डाला गया जहां पर गुलाम बेचने वाला भी मौजूद था और रोजाना उसे कोड़े मारे जा रहे थे, इसलिए कि अमीर ने उसकी

0: मत अदा कर दी थी।
1: तुम कुछ नहीं कर पाए,
2: किसी और जिंदान में डाल देते उसको।
0: मैं तो खुद यही चाहता था लेकिन नहीं कर सका। बुसरिब ने अरताद वहां था, उसने नहीं करने दी।
3: वाह मुसीबत, अब उसके साथ क्या करेंगे।
0: जैसा वो चाहते थे वैसा ही किया और माविया के हुक्म के मुताबिक उसको बहिश्त में मुंतकिल कर दिया गया।
3: बहिश्त, बड़ी वहशतनाक जगह। रशीद ने इससे पहले उसकी हालत मुझे बताई है।
0: वहां 3 या 4 दिन से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता।
3: दर्दनाक मौत।
1: हमें कुछ करना चाहिए।
0: किसी के बस की बात नहीं।

0: ऐसा करो, जिंदान का दरवाज़ा किसी बहाने से खुला छोड़ दो, और जब वो भागने लगे तो उसको पकड़ना नहीं बल्कि उसे जान से मार देना, ये उसके हक में बेहतर है।
1: मुमकिन नहीं, खुद मुझे भी उस जगह तक जाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कई एक निगहबान हैं।
2: हमें महल में ले जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
1: कैसे कैसे मैं तुम लोगों को वहां ले जा सकता हूं, किस बहाने से? बच्चों जैसी बातें ना करो।

0: Vou fazer uma.
1: रशीद ने कहा है कि हम उसका यहीं इंतजार करें। हाँ, इसी हाउस के पास।
2: Hello.

0: जाओ वहां खड़े हो जाओ। अपने चेहरे से नकाब हटाओ। अपना नाम बताओ।
1: हमजा इब्ने खालिद।
0: यहां तुम्हें किसने भेजा है?
1: शाही जिंदान के एक निगहबान ने।
0: दुनिया व आखिरत किसके हाथ में है?
1: अमीरुल मोमिनीन के हाथ में।
0: तुम किसे अमीरुल मोमिनीन जानते हो?
1: माविया इब्ने अबी सुफियान।
0: अगर वो कहे किसी बेगुनाह को कत्ल कर डालो तो कर दोगे?
1: हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो बेगुनाह नहीं होगा।
0: क्या तुम अमीरुल मोमिनीन की खातिर जासूसी करने के लिए तैयार हो?
1: अगर वो चाहें तो हाँ।
0: वो यही चाहते हैं।
1: मैं तैयार हूं।
0: ठीक है, अब जल्द से जल्द कूफा पहुंचो और अबा मोहम्मद के लश्कर में दाखिल होकर जासूसी करो और हर नई खबर जुहैर इब्न जैद के तवस्सु से यहां तलक भेजो। जुहैर, अपना चेहरा दिखाओ इसे। इसे अच्छी तरह पहचान लो और इसके हर हुक्म की चूं चरा किए बगैर तामील करो।
1: हाँ।
0: तुम्हारी माहाना तनख्वाह 100 सोने के सिक्के हैं जो जुहैर तुम्हें अता करेगा।
1: खुदा अमीरुल मोमिनीन को तुले उम्र दे।
0: जाओ और जितना जल्दी मुमकिन हो हरकत करो। अगर तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा।
1: घोड़ा है मगर तलवार नहीं है।
0: जाओ फिर तलवार ले लो वहां से।

0: दूसरे को भेजो।
1: जाओ उधर खड़े हो जाओ। चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ।
2: काब इब्ने आम्र।
0: कहां से हो?
2: दमिश्क।
0: खोलो।

0: तुम्हारे पास तलवार है?
1: तलवार नहीं है।
0: जाओ उधर से ले लो। अगर तुम्हारे पास तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा। अजीब बात है, घोड़ा ही सही, कुछ तो है। लो तलवार ले लो।
1: किसी के पास न तलवार है न घोड़ा, मगर मुझे यकीन है वो सब झूठे हैं। इनमें से जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। यही ठीक है, इसकी धार फौलाद।

0: आओ लो ये तुम्हारे सफर के लिए, घोड़ा और तलवार है
1: तलवार नहीं,
0: वहां से ले लो।
1: आओ। अरे क्या कर रहे हैं?

जाओ तुम वहां खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास तलवार है, जाओ वहां से ले लो।

0: Yalla. Yalla.
1: मैं ले जाता हूँ सरदार,
2: बहिष्ट के मुसाफिर हैं, मैं खुद ले जाऊंगा।
0: जाना

0: Al nereye sak.
1: Allah!
0: Zindanban! Zindanban! दरवाजा खोलो।
2: इजाजत नहीं है। तुम्हें तो मालूम है ये नहीं खुल सकता।
0: मैं कहता हूं खोलो। सरदार बुशरिफ ने अर्थात यहीं पर है, उसी ने हुक्म दिया है, आता ही होगा अभी। इन दोनों कैदियों को तहवील में लो। किस बात के मुंतजर हो, क्या सोच रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो।

0: निगहबान, ए निगहबान, इधर आओ, जल्दी आओ, मदद करो, आओ जल्दी, जल्दी करो, इससे पहले कि मुसल्ला हो जाएं, इनको काबू करो, जल्दी आओ, चलो आओ, मेरे साथ आओ। वो वहां पर है, जाओ जल्दी जाओ, इसको लेकर के आओ, यहां पर ले आओ जल्दी।
1: क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं निगहबान। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो,
0: चलो आओ जल्दी करो, शाबाश, इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को, इस दरवाजे को खोलना जरूरी है, आओ धक्का लगाओ,
1: दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो,
0: जोर लगाओ, चलो और जोर लगाओ, अब यहां देर नहीं करो, अभी तक मुर्दों को उठाने नहीं आए हैं, हर रोज गुरूब के वक्त मुर्दों को इस दरवाजे से बाहर फेंकते।

0: हारिस आओ जल्दी आओ।
1: सलाम चाचा।
2: सलाम चाचा। चाचा सलाम अलैकुम।
3: लोहर हाँ
0: चलो आओ चले
3: जल्दी से सवार हो जाओ यहाँ से हम निकले जल्द से जल्द।

0: जब से ये कमबख्त यहाँ आया है सबको अपनी तरफ जमा कर लिया है, नहीं मालूम किसने मकसद क्या है।
1: चलो उस खेमे में चल के देखते हैं जो इतना ज्यादा लोगों का आना जाना है।
0: चलें देखें क्या बात है।
1: चलो उठो।

0: तुम तो उस ग्रोह के सरदार हो, तुम्हारी बात तो सुनी जाएगी।
1: सिफीन में तो हमने मुआविया की बात सुनी थी, लेकिन उसने अपना वादा वफा नहीं किया।
0: ये मुझ पे छोड़ दो, तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हारे पास 1000 जंगजू है, अंदाजा है तुम्हें कितना माल मिलेगा?
1: हम लोग मुआविया के लिए नहीं लड़ेंगे।
0: फिर हसन इब्न अली के लिए भी मत लड़ो, क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है ना?
2: तलवार ना चलाने का क्या दोगे?
0: फीकस 200 सिक्के।
2: 200 सिक्के क्या, बहुत कम है। हसन रसूल खुदा का बेटा है, उसके साथ बेवफाई के लिए बहुत कम है।
0: 500 सिक्के तुम में से हर एक के लिए और 50 सिक्के हर जंगजू के लिए।
3: ठीक है, हम पैसे पहले लें।
0: ये नहीं हो सकता अबू उमर, आधे तुम लोग अभी ले लो, आधे बाद में।
4: कबूल है, हम तुम्हें जानते हैं इब्ने जाबिर, अगर अहद टूटा तो समझ लेना।
0: अहद नहीं टूटेगा, वादा। मिलाओ हाथ।
4: लमूमी था करो,
1: अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, अभी नहीं, बाद में। चलो उस तरफ।
3: मैं माफी चाहता हूं, कोई राजी नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से अबा मोहम्मद को सलाम पहुंचाएं और कहें कि हमने तुम्हारी बैत की है, तुम फर्जंदे रसूल हो, लेकिन हम जंगो जिदाल वाले नहीं हैं। हमारे मर्द थक गए और वो कहते हैं कि हम एक और जंग का तहमुल नहीं रखते।
0: अभी कौन सी जंग हो रही है? हसन इब्न अली को तो सिर्फ आपकी हिमायत चाहिए। वो तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर माविया के साथ जिहाद का वक्त आया तो आप किसका साथ देंगे।
3: हम क्या करें, हम तो अबा मोहम्मद के साथ हैं, हम उनके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, बेतरफ रह जाएंगे।
0: ये तो फर्जंदे रसूल को देने के लिए कोई जवाब ना हुआ। साफ साफ बताएं आप किसके साथ हैं।
5: तुम यहाँ इतिहास से बैठो, मैं वहां से आता हूँ।
3: लोग जंग से आजिज हो चुके हैं, दूसरी तरफ बरादर कुशी है, ये एक फरीजा है जिससे शाना खाली नहीं किया जा सकता। फिर जहाद का क्या होगा? मैंने कहा ना, हमने उनकी बैत की है, लेकिन सुलह में अगर जंग पेश आई तो हम बेतरफ रह जाएंगे। मैं चलूं।
4: कौन है, बोलता क्यों नहीं? जासूसी कर रहा है, बोलता क्यों नहीं? आ इधर।
3: सलाम।
0: कौन हो तुम लोग?
6: ना डरो, दोस्त हैं तुम्हारे, अबा मोहम्मद के दोस्तों में से हैं।
0: इसी कबीले से हो?
1: नहीं, हम शाम से आए और अबा मोहम्मद की ज़ियारत का इरादा है।
0: तो यहाँ क्या कर रहे हो?
6: बताते हैं।
7: الكفار قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين

0: सहरा के फर्जर की खबर लो, हुसैन इब्ने अली दारुल खिलाफा की तरफ जा रहे हैं, सहरा के फर्जर की खबर लो।
1: क्या हुआ है बिन हुरैस, ये कैसा शोर है?
2: या अमीर, या अमीर,
3: ये उन कूफा वालों का शोर है जो हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं।
4: हुसैन कूफा पहुंच गए हैं, इस वक्त दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं।
1: महल का दरवाजा बंद कर दो, किसी भी कीमत पर हुसैन को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होना चाहिए।

आंखों किस तरह से दूसरा रुख नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुसैन इराक की हुकूमत से बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं थे।

0: महल का दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते?
1: दरवाजा किसके लिए खोला जाए? जैसा कि मालूम है कि हुसैन इब्ने अली आप नकाब पोश सवारों में से कोई एक है, तो मेरी नसीहत कान खोल कर सुन ले कि इराक की हुकूमत उस बदतमीज और बगैर तरबियत के घोड़े की तरह है जो अपने ऊपर सवार होने वाले को गिराकर उसे मार मार कर उसका भूसा बना देता है।

0: आपका मुंह क्यों खुला रह गया? क्या मेरे सींग हैं या दुम?
1: नहीं नहीं, मेरी हैरानगी की वजह अमीर की तदबीर है जो हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं।
0: और मुझे क्या करना चाहिए था? मैं हुसैन के अलावा किसी भी और के लिबास में कूफा आता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आखिर ये कैसी हुकूमत है नौमान, पूरा कूफा हुसैन का तालिब है। मेरे ख्याल से खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया है ना?
1: जो कुछ आपने इन कूफियों से देखा वो एक बचकाना खेल था। अगर आप ताली बजाएं तो सफा फिर पलट जाए।
0: ताज्जुब है, तो वो ताली आपने क्यों नहीं बजाई?
1: मैं अगर ताली बजाने वाला होता तो हाकिम कूफा रहता।
0: मुस्लिम इब्ने अकील के चाहने वालों का शोर शराबा कैसा है तुम्हारी नजर में? क्या वो भी कोई बचकाना खेल है?
1: कूफे में शिया अकलियत में है, जब तक ये लोग अकलियत में हैं, खतरनाक नहीं है।
0: ये हुकूमत करने का अंदाज किस पागल मुफक्किर का तज्जिया है? हाँ,
1: मैंने हुकूमत करने का ये तरीका गुजर जाने वाले खलीफा से सीखा है।
2: मुआविया मर चुका है।
0: मर चुका है?
1: हाँ, जैसा कि नजर आ रहा है उसका तर्ज हुकूमत भी उसी के साथ दफन हो चुका है।
0: तुम्हें मुस्लिम बिन अकील के इरादों की खबर थी और खलीफा के कहने के मुताबिक उसको और उसके साथियों को तुमने आजादी का मौका फराहम किया है।
1: इस बेतवज्जोही का नतीजा ये हुआ कि वो मसलत मेरे हाथ से निकल गई है और फिलहाल आप उस पर सवार हैं। खलीफा नौजवान है और हम जैसे बूढ़ों को पसंद नहीं करता, और फिर आप नौजवान लोग खलीफा की ज्यादा मदद कर सकते हैं।
0: हाँ, बहुत खूब बुढ़े सियासतदान।

0: बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाँ ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमा बरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा यह कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है, मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस।
1: नहीं बिन हुरैस, नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुख्सत दी हमने नुमान, यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो, तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ।

मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है, ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है। इजा जहरतिल बिदाउ फी उम्मती, बिदअत का जहूर हो चुका है, एक होलनाक बिदअत। मैं उस हुसैन इब्ने अली के फितने की मंतक नहीं समझ पाया, वो भी उस खलीफा के दौर में जो शायरों और अदीबों का खातिम है और दीन मुस्तफा का जेवर और जीनत है। अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो मुझे आगाह कीजिए कि मैं जाहिल ना मरूं। हुसैन रसूल खुदा का नवासा है, उसकी

0: की सच्चाई से वाकिफ हो फिर बेहुदा बातें मत करो। कसम खुदाए ला शरीक, मैंने हरगिज अली से सिवाय हुज्जत और हकीकत के कोई और सुखन
1: नहीं सुना। इसका मुंह बंद करो और इसे मेरी आंखों से दूर करो।
2: सिपाहियों जल्दी,

0: मौला हुसैन कूफे का आजम कर चुके हैं। अगर तुम्हारी गैरत राजी है कि तुम फर्जंदे रसूल का साथ नहीं दो तो मत दो, मैं तुम्हें जहमत नहीं देता।
1: मुझे तुम्हारी निगाहों से शर्म आती है कि मैं तुम्हें कोई मनफी जवाब दूं। खुदा की कसम, एक राई के दाने के बराबर भी इन कूफियों से मुझे उम्मीद होती तो उससे फैन के दिनों की तरह कफन पहन लेता और मौत से सौदा कर लेता। अफसोस, भेड़िए का निवाला यानी मौत के मुंह में खुद को डालना।
0: अपने दिल के हुक्म पर मौला हुसैन की बैत की है अबुल हदीद, अकल के हुक्म पर नहीं। जी हाँ, भेड़िए का निवाला यानी मौत। कूफे वाले गधे की औलाद हैं, आधे रास्ते के साथी हैं, वादों में बेवफा हैं, मगर तुम्हें क्या? तुम वाकिफ हो कि मौला हुसैन बरहक हैं या नहीं?
1: मैं मौला हुसैन की हक्कानियत का मुनकिर नहीं हूँ अबू इसहाक।
0: बहुत खूब। बरोज़े हशर अगर तुमसे पूछा जाए कि हुज्जत हक का साथ क्यों नहीं दिया था तो क्या यही जवाब दोगे जो तुमने मुझे दिया है? न तुम्हें कूफियों की कब्र में सुलाया जाएगा और न तुम्हारे अमल को कूफे वालों के अमल से नापा जाएगा। अब तुम खुद ही जानो।
1: रुको अबू इसहाक, बैत लिए बगैर जा रहे हो?

0: में घुस आए, कहो कि जनाबे मुस्लिम की इकामतगाह को तब्दील करते रहें। जनाबे मुस्लिम को किसी भी घर में ज्यादा लंबे अरसे नहीं रहना चाहिए।
1: मुख्तार से कहो कि इराक के उन कबीलों से गाफिल ना रहे जिन्होंने अब तक किसी की बैत नहीं की है। उन लोगों से ऐसे मामला तय कर लो कि वो सब वाकई किसी की तरफदारी न करें और कम से कम हमारे दुश्मनों का साथ न दें। उमर साद को हुक्म मिला है कि अरब के उन्हीं कबीलों में से बेहिसाब सोने की लालच से एक अजीम लश्कर बनाए। एलियाती लोग मुमकिन है दीन के मामले में सुस्त व काहिल हों, मगर एलियाती रस्म व रिवाज के मामले में नहायत मजबूत लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी हुरमत को इन दिरहम व दिनार के बदले बेच डालें।
2: मुख्तार का एक और पैगाम भी है।
1: हम सुन रहे हैं।
2: अबू इसहाक कुछ परेशान था।
3: ये इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अबू इसहाक का पैगाम क्या है? वो क्यों परेशान था?
2: वो इस बात पर परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्कार लोग शियों के नाम से हमारे हलके में दाखिल हो जाएं और जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह से बाखबर हो जाएं। उसने ये पैगाम दिया है कि जनाब मुस्लिम बारी बारी घर बदलते रहें और किसी मुय्यन जगह पर ज्यादा अरसे न रहें।
3: मुख्तार जाती तौर पर एक बुरी सोच रखने वाला इंसान है। उसके गुमान के मुताबिक तो हमें अपनी आँख के दीजे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी उसके ख्याल में हम इतने गए गुजरे हैं कि दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और मामला खराब हो जाने देंगे।
4: गलत मत सोचो सुलेमान, अबू इसहाक एक दूरंदेश शख्स है। उसका पैगाम कोई बुरा नहीं है। इब्ने ज़ियाद मक्कारी के साथ कूफे में दाखिल हुआ है। बईद नहीं है कि उसके कारिंदे किसी मक्कारी से हमारे रास से बाखबर हो जाएं।
3: हानी जान, जनाब मुस्लिम आपके घर के अलावा कहीं भी चले जाएं, हमारा उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी एक अच्छा बहाना है अजीज अहबाब तुम्हारी अयादत को आए और कोई शक भी ना करे।
1: भाइयों, मुख्तार का पैगाम ये मतलब रखता है कि एहतियात करना अकल की निशानी है। अब जबकि कज़ा व कदर इलाही के तहत हम मजबूर हैं कि हम छुपे रहें, तो बेहतर है कि अपने अजीजों से भी इज्तनाब करें और उन लोगों से जिनके बारे में कोई शक या तर्दीद हो उनसे हमारे बारे में या हमारे मामलात की रूह से बात न करें। बिन हुरैस।
5: जी अमीर।
1: क्या हानी वाकई बीमार है या उसने बीमारी को हमसे ना मिलने का बहाना बनाया हुआ है?
5: वाकईतन बीमार है जनाब। मैं खुद उससे मिलने गया था। वो बुखार की शोरिश से जल

0: फिर हम उसकी आदत के लिए जाएंगे।
1: अपने दुश्मन की आयादत करने जाएंगे?
0: बीमार की आयादत करना सुन्नत पैगंबर है, और दुश्मन की आयादत करने का सवाब कई गुना ज्यादा है।
2: तुमने सुना है इब्ने अकील? तुमने सुना उस हरामजादे का पैगाम? इब्ने बरजान आज रात मेरी आयादत के लिए आ रहा है। खुदा की कसम यह आयादत शैतान की आयादत है। वो आ रहा है ताकि लोगों की नजर में अपने आप को बरक और काबिले तवज्जो दिखाए। ये एक अच्छा मौका है कि हम उसके शर को खत्म कर दें। कूफे की राह मौला हुसैन के लिए हम

0: साला के अगर वो मेरे घर में मारा गया तो सारी बात मेरी गर्दन पर आ जाएगी कि मेहमान को अरब ने मार दिया, मगर मेरी तमाम इज्जत आबरू मेरे मौला हुसैन पर कुर्बान। आप इब्ने मरजाना को मार देंगे?
1: मगर कैसे शेख?
0: अपनी तलवार को आमादा रखकर इसी जेर जमीन कमरे में छुप जाएं। जब मैं पानी तलब करूं तो बाहर आकर एक कारी जरबस उसका काम तमाम कर दें।

0: अबुल फतेह अपने सारे कारनामे आपके सामने भूल गया और यहाँ से चला गया। उसके दांत इस तरह लरज रहे थे कि मैं डर रहा था कि टूट ना जाए। हनी, हनी जान,
1: अगर अभी सोया है तो इसे मत जगाओ।
0: इसने खुद जिद की थी कि जब आप तशरीफ ले आए तो इसे जगा दूं। हनी, हनी उठो, जनाबे अमीर आए हैं।

मार चुके, शर्म करो, शर्म करो, वाय हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। इब्ने अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों

एक परदेसी मारा गया है, एक बेवतन मारा गया है, ए मुसलमानों आओ उसके गुस्ल का इंतज़ाम करो, उसके कफन का इंतज़ाम करो, नमाज जनाजा का इंतज़ाम करो, उसकी कब्र बनाओ। आज़ादार और रिवायतों के अंदर हमें मिलता है कि 11वीं मुहर्रम को जब आले मोहम्मद का ये लूटा हुआ काफिला करबला से रवाना होने लगा है तो एक 4 साल बच्ची नशेब में आकर एक लाशे बेसर से लिपट कर रोना शुरू की। इतने में शिमर बेहया था जिया ने लेकर उस बच्ची के पास पहुंचा और कहा, सकीना उठो चलो हमारे साथ। सकीना ने शिमर की तरफ देखा और कहा, ए शिमर तू मुझे यहीं पर छोड़ दे, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। शिमर ने पूछा, सकीना तू यहाँ पर रह कर क्या करोगी, आज़ादारों सुन सकोगी 4 साल बच्ची ने क्या कहा। कहा, ए शिमर मैं अपने बाबा को गुस्ल दूंगी, मैं अपने बाबा को कफन दूंगी, मैं अपने बाबा की कब्र बनाऊंगी। तो शिमर एक मरतबा हंस पड़ा, कहा, सकीना तू अभी बच्ची हो, ये सब काम कैसे कर लोगी। तो सकीना ने कहा, शिमर तू फिक्र न कर, तुम जहां से जब चला जाएगा बीच रास्ते के मैं खड़ी हो जाऊंगी, अरे कभी तो मेरे नाना के कलमा गो यहां से गुजरेंगे तो मैं पुकार पुकार कर कहूंगी, ए मुसलमानों आओ एक परदेसी मारा गया, एक गरीब वतन मारा गया, आओ उसे गुसल दो, उसकी कब्र बनाओ। हाँ, आज़ादार रिवायतों के अंदर हमें मिलता है कि 11वीं मुहर्रम को आले मोहम्मद का ये लुटा हुआ काफिला करबला से रवाना हुआ।

के हाथ पस गर्दन बंधे हुए थे। रिवायतों में हमें मिलता है जब ये काफिला कूफा पहुंचा, जो ही शहर कूफा में दाखिल हुआ, शहजादी ज़ैनब नाके पर सवार थी, नाके की ऊंचाई से एक अजब मंजर देखा, एक

कौन कौन है जो इस तरह रो रही है कि मेरे दिल को खोला रहा है। सैयद सज्जाद हाथों में हथकरियां, पाँव में बेरियां, गले में खारदार तोक, आहिस्ता आहिस्ता

इससे अपने आप को दूर करें। खुलासतन और स्ट्रेटेजिकल वर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जो वाजिबात हैं उसको अदा करें, जो आपके ऊपर वाजिब है उसको अदा करें, कोताही ना करें। खासतौर पर नमाज जो वाजिब है उसमें कोताही ना करें। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि नमाज जो है वो इंसान को फाशा और मुनकर से बचाती है। ये आप जवान है जाने मोहतरम, आपका दिल कल्ब पाक है, आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी पाकीज़गी इतनी ज्यादा है कि आप मजलिस इमाम हुसैन में आए हुए, आपका कल्ब पाक है। उस कल्ब की तरह कि जिसे हजरत ईसा का वाकया, मैं आपकी खिदमत में जवान है, बहरहाल शब आशूर है, वक्त बहुत तेजी से है कि मजालिस भी बहुत ज्यादा है, बस एक वाकया आपकी खिदमत में जवान है आपके दिल को एक तलंगुर देने के लिए। हजरत ईसा के हवारी थे, जो साथ उनके हवारी थे, एक शहर के पहुंचे, देखा दीवार गिरी तो नीचे खजाने थे, बहुत हीरे जवाहरात थे। वो हीरे जवाहरात ऐसे थे कि ये बहरहाल उठाने लगे, यानी ऐसे अलग, हजरत ईसा के हवारी थे फिर भी हीरे जवाहरात में लग गए। हजरत ईसा ने बोला कि मैं इनको कोई दर्श दूं, कहा मैं शहर में जा रहा हूं, ऐसा हीरा लेकर आऊंगा कि जिसकी कीमत कोई नहीं लगा पाएगा। शहर चले गए बहुत तेजी से, आगे कई दफा पढ़ चुका हूं मैं, गए देखा एक खराबे में, छोटा सा इलाका है, एक घर में देखा बूढ़ी सी औरत है, कहा मैं मुसाफिर हूं, पहचानती नहीं थी हजरत ईसा को, कहा मेरा बेटा गया वह आएगा आपकी खिदमत करेगा। बेटा आया, गरीब से लोग हैं, चेहरे पर कर्ब है उसके, परेशानी है, कहा क्या परेशानी है, कहा आपको क्या बताऊं, कहा नहीं बता, हो सकता है। तो उसने बड़ा खुलासतन कहा कि मैं मिट्टी का काम करता हूं, मजदूर हूं, मैंने देखा एक कारवां गुजर रहा था, हवा अड़ी, हवा जो चली तो कारवान का पर्दा हटा, तो मैंने एक किसी पर मेरी निगाह पड़ी और मैं उसमें जज्ब हो गया, लेकिन पता चला वो तो यहाँ का सुल्तान है। तो कहा ये तो कोई मसला नहीं, तुम पत्थर लाओ, एक तश्त में लेकर आया, इजाज़े नबूवत से उन सबको जवाहरात में बदला, कहा उस शख्स के पास ले जाओ और अपना मुतालबा उससे बयान करो। ले गया, मुतालबा बयान किया, सुल्तान था, पत्थरों की कीमत जानता था, गाय तो बड़े कीमती पत्थर है, कहा एक और लेकर आओ, इन्होंने एक और दरवा दिया। उसने देखा कि ये बड़ा अच्छा जवान है, उसने जो उसकी आजत थी उसको भी पूरा किया और अपना जो तख्त, अपना जो ताज था वो भी उतार के दे दिया, कहा तुम ही संभालो आज के बाद इस पूरे निजाम। वो जो फकीर था, वो जो मजदूर था, जो मटियां उठाता था, वो अचानक से सुल्तान बन गया। अब जब वो सुल्तान बना, उसने हजरत ईसा को वो भी नहीं पहचानता था, कहा हजरत ईसा को कि अब तो बहुत अच्छे दिन आ गए, तो हजरत ईसा बोले नहीं मैं जा रहा हूं, कहा कहाँ जा रहे हैं, मुझे इतना सब कुछ दिलवा के आप कहाँ जा रहे हैं, कहा असल खजाना खुदा की बंदगी है, मैं उसके लिए जा रहा हूं, असल तो वो है। तो उसने कहा मुझे दुनिया दिलाकर खुद असल खजाने की तरफ जा रहे हैं, अपना सब छोड़कर हजरत ईसा के साथ चला गया। जैसे ही शहर के दरवाजे पर आया, हवारी इंतजार कर रहे थे कि कोई हीरा लेकर आएंगे, तो कहा ये तो आप एक जवान लेकर आए हैं, कहा इसका कल दुनिया का सबसे कीमती हीरा है जिसमें खुदा बसता है, खुदा बसता है।

जानेम अब्राहम इन्हीं कीमती हीरो को लेकर हुसैन करबला आया। ऐसे हीरे दस्ते करबला में रखे गए कि जिनका नूर आज तक इंसानियत को हिदायत दे रहा है। करबला ही है, जानेम करबला को समझने की कोशिश कर। करबला किसी फिरके की नहीं है, इमाम हुसैन सबका है। अजान शब आशूर वो शब है कि आखिरी रात का मेहमान रह गया। मुसीबतें आपने सुनी है, मसाइब आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। अजान मोहतरम असल ये है कि इंसान उस गम में अपने आप को ढाल दे,

कैसा पूरे आलम में शोर मचा हुआ है, पूरा आलम गिरिया को ना जाने। जब मुहर्रम शुरू होता है, मुहर्रम शुरू होता है, मुहर्रम का चांद निकलता है, अर्श पे वो खून भरा जख्मियों से चूर वो कुर्ता लटका दिया जाता है। ये जो आप रोते हैं ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो गम हमारे दिलों में बैठ जाता है ना, ये गम आपका अपना भी मरे ना, आपने ऐसे नहीं रोना। हुसैन पर रोना हमारे बस में नहीं है। ये वो गम है जो पूरे आलम पे छा जाता है। हर चीज गिरिया कोना होती है, मट्टी करबला की सुर्ख हो जाती है। अरसा हुसैन है जो हर दफा हमें बुला रहा है। मां ने चकियां पीस कर इसे पाला, मां ने यही कहा था अपने बेटे से, बेटा जब तक तुम्हारा आखिरी अजादार जन्नत में नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। गम की रात है, गम है, न जाने किस खेमे में कौन सी मां किसको क्या कह रही। अली असगर की मां बड़े प्यार से अली असगर को देख रही है, देख भी रहे हैं ना लोग, बास को पता था ये कल नहीं रहेगा। बहन भाई रात को गुफ्तगू कर रहे थे, जनाब जैनब ने कहा इमाम हुसैन पूछा यार भैया ये जो आपके असहाब आए हैं ये कल आपके लिए कुछ करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे भैया आपको। कहते इमाम हुसैन खेमों के पीछे से ले गए, बातुलमा बयान करते क्या लेगा, देखा हबीब इब्न मजाहिर बैठे हुए हैं, सारे असहाब हैं, तलवार हाथ में रखी हुई है और कह रहे हैं देखो कल ऐसा ना हो कि हमसे पहले रसूल की औलाद कुर्बान हो जाए। यार तैयारी हो रही है, एक और कैमरे के पास से गुजरे, देखा हजरत अब्बास बैठे हुए, सारे बनी हाशिम बैठे हुए और जनाब अब्बास कह रहे हैं ऐ बनी हाशिम के जवानों सुबह ख्याल करना ये ना हो लोग बोले मेहमान बुलाए थे उनको मारे। यानी हर कोई रात को ये चाह रहा है सुबह मैं पहले चला जाऊं। अजीब इश्क है दुनिया में, लोग देर से जाते हैं आखिर में जाते हैं। क्या हुसैन ने लोगों को अपनी मोहब्बत में कर दिया, हर कोई पहले जाने को तैयार। रसूल का नवासा, लहमों का लहमी, दमों का दमी, क्या कहा रसूल ने, मेरा गोश्त इनका गोश्त है, मेरा खून इनका खून। क्या किया उम्मत ने, क्या किया, आज भी समझ नहीं आता उम्मत को क्या किया उम्मत ने, ऐसे भी कोई करता है। वो भी मुसलमान कलमा हो, मुहर्रम उन महीनों में से है जिसमें जंग करना मना।

इमाम साहब से निकले, हैंडो के पीछे कहीं जा रहे, देखा आवाज आई आहट से, और कहा कौन है? नाफे बिन हलाल। नाफे कहा? हाँ बोला बस मैंने देखा आपका ख्याल होगा कहीं अकेले जाए कोई। कहा बोला आप कहाँ? कहा मैं देख रहा हूं कि सुबह जो कोई गिरेगा उसे जगहों पे तकलीफ ना हो। पत्थरों को हटा रहा है, सुनकर हसरत कौन सी नेकी थी जो आज हुसैन के जिक्र पे ले आई है? नहीं पता आपको, आपको खुद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बता यहां, बता भी रहा आपे, यहां कासिम के लिए आगे अली अकबर गिरेगा, नाफे अब्बास के पास। नाफे कहता है कि एक मकाम से सुनिएगा, बस कामुल के साथ सुनिएगा। कहते हैं एक मकाम से इमाम हुसैन बड़ी तेजी से मदद करते हैं। कहा बोला ये कौन सी जगह है? कहा क्यों? कहा एक बूढ़ी खातून की रो रही की आवाज है यार। सलाम हो उस माँ पर जो मदीना से आई हुई उस गोदी कतले गांव में पत्थरों को हटा रही है, और मेरा जहरा जाया मेरा बेटा, और जिसे मेरे बड़े नाजों से पाला, शबे आशूर है अदर रात गुजर गई, बस रो लिया मसाइल हो गए, रोते रहिएगा जब याद आए रोते रहिएगा, सोना नहीं है जनाब सैयदा शबे आशूर सोई नहीं है, जनाब जैनब की आंख न लगी शबे आशूर, भाई को देखती रही है जी भर के, और वो छोटी सी बच्ची जिसके लिए आज आखिरी रात है, जो सीने पे सोएगी कल सीना नहीं होगा। खुदा आपको इमाम जमाना राजी आपसे, छोटे छोटी बच्चियों को देखे ना आप कुर्बान जाए जनाब सगीरा, हमारी औलाद है क्या औलाद है। बस आराम, बस मैंने पढ़ लिया, मैं समझ गया कितने मसाइब आप बर्दाश्त करते हैं। बस रोते आंसू दो शबीये ताबूत है, तामुल से सुनकर ज़ियारत भी कीजिएगा, मातम भी कीजिएगा, पुरसा भी दीजिएगा, नहीं पता कल सुबह जिंदा हो या ना हो। हजरत आरा ने मोहतरम दिन तुलू हुआ अली अकबर की अजान से, अजान अली अकबर, मसाइब सुने हैं आपने जनाब अली अकबर के, इमाम ने मुअज्जिन कोई और था, अली अकबर को बुलाया, अली अकबर अजान दो बेटा आज अजान आप देंगे, रोजे आशूर तुलु नहीं होती बगैर अली अकबर। अजान दी ने जब कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खेमों में कोहराम सा मचा, जनाबे ज़ैनब ने कहा ये आवाज तो अली अकबर की लगती है, बस अल्लाह अपने मोहतरम बस दिन शुरू हुआ, एक एक कर कर गया। मैं सब मसाइल सारे नहीं पढ़ पाऊंगा। आजाद आने मोहतरम हमारे अंदर न पढ़ने की ताकत न सुनने की ताकत, ये तो सैयदा का लाल था जो सुबह आ
آشور سے اثر آشور تک کبھی علی اکبر کا جگر

0: कभी कासिम के बदन को लिए, कभी अब्बास के बाजू, कभी अली असगर का खून
1: आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। भूखा है, प्यासा है, गरीब बीमार, मजलूम बीमार, अकेला रह गया, कोई नहीं है, बस विदा पढ़ना है। मैं विदा पढ़कर बस आखिरी लम्हे तक सब खत्म हो गया। बहन की खैर नहीं आया, बस आखिरी खेमे में मां की निशानियां थी, कुर्ता थी, गुफ्तगू क्या हुई, मक्तल खामोश, बहन भाइयों ने बातें क्या की किसी को नहीं। बाहर निकले, सवारी चलना शुरू हुई, हसरत भरी निगाह से बहन भाई को देखने, सवारी थोड़ी सी और चली, देखा सवारी हिलती नहीं, छोटी सी बच्ची है। अब बेटियों वालों, जब आप घर से निकलते हो तो छोटी बेटी आपसे पूछती है ना, बाबा कब आओगे, पूछती है कि नहीं, पूछती है बाबा कब आओगे। अरे ये बच्ची जिसे पता हो जो गया वो वापस नहीं आया, बच्ची ने नीचे बाबा को बुलाया, बाबा के गले लगी, गिरिया किया, बच्ची ने यही नहीं कहा बाबा कब आओगे, बच्ची कहती है बाबा हमें मदीना वापस छोड़ा। बाबा
2: इमाम ने कहा बेटा अब देर हो गई, देर हो गई, बस इतना मसला है बच्ची का, बेटियों वाले हो, बेटियों को सलामत रखे होगा, छोटी बेटी सबसे आखिर में मिलती है और जब घर जाते हो ना सबसे पहले मिलती है। इस बच्ची के साथ भी यही हुआ, आखिर में मिली, सर भी सबसे पहले ऐसी ही
0: पड़ता है। रोजे आशूर की आखिरी मंजिल,
1: सवारी और चलना शुरू, पीछे से बहन दौड़ती है, महलन महलन यमन सहारा, आहिस्ता चलो नजरा मेला,
2: मैं कुर्बान जाऊं। जनाब जैनब ने भी अपने भाई को अपनी मां के नाम से पुकारा, महलन महलन यमन सहारा, आहिस्ता चलो जहरा के लाल, आहिस्ता चलो, तो मेरी माँ की कमाई जा रही है, आहिस्ता चलो।
0: इमाम ने जब देखा मोड़कर कहा बहन अभी तो मिलकर आया हो, कहा मुझे माँ की वसीयत याद आ गई, माँ का नाम सुनना था। सैयद शौदा जमीन पर आए, बहन ने तहकुल हनक का कपड़ा हटाया, गले पर बोसे देना शुरू कर दिए। माँ जानती थी रोजे आशूर मेरे बेटे के साथ क्या होगा, ये तो तब पता चला जब मेरा मौला जीन से जमीन पर आया। सिमरन जाले सुन अला सदरे, सिमर सीने पर बैठा, कुंद खंजर की जरबत है और ये दिल्ले जैनबिया पर खड़ी ये बहन के

कहते हो तुम्हारे लोग जंग से थक चुके हैं, अब बेतरफ रहना चाहते हैं। अहले जंग व जहाद भी नहीं है, बरादर कुशी पे एतकाद नहीं रखते। है हाथ में नज़िल्ला, अपने आप को मुसलमान कहते हो, यही है तुम्हारी मर्दानगी? फरजंदे रसूल खुदा को माविया के चंद सिक्कों पे बेचते हो? है हाथ में नज़िल्ला, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। खुदा लानत करे तुम लोगों पर।

0: कूफे तक कितना रास्ता रह गया होगा।
1: इंशाल्लाह कल दोपहर हम कूफा में होंगे।
0: खुदा करे साले और मोहम्मद भी वहाँ हों।
1: वहीं होंगे वरना पहुंच जाएंगे।
0: इधर कुछ आराम कर लेते हैं।
1: ठीक है उतरते हैं।

0: कल अबा मोहम्मद की जियारत को जाएंगे।
1: क्या तुमने उन्हें नहीं देखा?
0: क्यों नहीं देखा था, चंद साल पहले जब जवानी में अपने बाप के साथ तलवार चला रहा था। दोबारा उसके दीदार का मुश्ताक हूं। हर तुमने उन्हें कैसा पाया?
1: क्या बताऊं, मैंने अली मुर्तजा को नहीं देखा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं उन्हीं के सामने बैठा हूं। हारिस, अगर मैं ना होता तो तुम लोग दमिश्क में रुक जाते, सही कह रहा हूं ना? और रशीद भी अपने दारोगा वाले काम पे बाकी रह जाता।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
1: अगर दमिश्क ही में रह जाते तो क्या अबा मोहम्मद की ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे?
0: मैं और मेरे बेटे इब्ने अब्बास के कहने पर दमिश्क में रह रहे थे। रशीद भी हमारे इसरार पर माविया का जिंदान बान रहा और माविया पोशीदा तौर पर साजिशें करता रहा, और अली मुर्तजा लश्कर जमा कर रहे थे कि माविया की खबर लें। मैंने और रशीद ने कोशिश की कि उसके खुफिया साजिशों का पर्दा फाश कर दें और उबैदुल्लाह को बता दें, लेकिन अब तो हर चीज फाश हो चुकी है। माविया खुल्लम खुल्ला दुश्मनी जाहिर कर चुका है और अब हमारे दमिश्क में रहने की कोई जरूरत नहीं है।
1: मुझे तसल्ली दे रहे हो?
2: यकीन रखो, कोई चीज हमको दमिश्क में रोक कर नहीं रख सकती जो हमको अब्बा मोहम्मद की ज़ियारत से महरूम करे।
3: तो इसका ये मतलब है कि तुमसे कोई राबता नहीं है?
2: वहां पर देखो, अरे आग।
4: अब पता चलेगा तुम किसके मुकाबले में खड़े हो और तुम सबकी ज़बान काट दूँगा। मैं तुम सब लोगों को दिखाऊंगा कि हसन इब्न अली के सिपाहियों को रोकने वालों का अंजाम क्या होता है। आग लगा दो इनके घरों को, जला दो इन सब के घरों को, और हसन इब्न अली की मुखालिफत करने वालों को निशाने इबरत बना दो। हसन इब्न अली दुश्मन से लड़ने के लिए फौज बना रहे हैं और तुम लोग उनकी हिमायत से इनकार कर रहे हो। अगर तुम लोगों को प्यार की जबान समझ में नहीं आती तो मैं तुम लोगों को दूसरी जबान में भी समझा सकता हूँ। गिरफ्तार कर लो इनकी खवातीन को, और आज हम 6 खवातीन को लेकर जा रहे हैं और 2 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। मैं आखिर में तुम सबको खबरदार करता हूँ कि जंगी तावुन के लिए तैयार रहें, वरना तुम सबको कत्ल कर दूंगा और घर घर में आग लगा दूंगा, और फिर देखना कि हसन इब्न अली को तावुन न करने वालों का हाल क्या होता है।
5: कूफे की सिपाह,
4: हसन इब्न अली के सिपाहियों के लिए गिज़ा की जरूरत है। तुम लोगों ने तामून से इनकार किया, ऐसा क्यों?
0: यहाँ क्या हो रहा है?
4: तुम लोग दूर हो जाओ यहाँ से, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम हुकूमत के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के हुक्म से आए हैं।
0: कौन सी हुकूमत?
4: हसन इब्न अली की। दूर चले जाओ तुम लोग यहाँ से।
0: कहते हो कि हसन इब्न अली ने हुक्म दिया है कि मुसलमान जवानों की गर्दनें उड़ा दो और उनके घर जला दो और उनके बीवी बच्चों को भी कैद कर डालो।
4: हसन इब्न अली फौज बना रहे हैं और उनको मदद की जरूरत है।
0: बकवास न करो, तुम लोग झूठ बोलते हो। बताओ तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो?
6: गिरफ्तार
0: कर, हर उन्हें गिरफ्तार कर, हर

0: poi vi faranno a casa che... Pacalloni, pacalloni! Leão, senhor. बताओ तुम्हें किसने भेजा है? अगर ना बताऊं तो खुदा की कसम अगर नहीं बताया तो मैं तुमको इन्हीं लोगों के हवाले कर दूंगा।
1: ठीक है बताता हूं। हम लोग माविया के सिपाही हैं। जाक ने हमें यहां भेजा है। हमें हुक्म दिया गया है कि हसन इब्ने अली के सिपाहियों का लिबास पहने और हर जगह आग लगा दें और ये कहें कि हसन इब्ने अली ने भेजा है और हमें इस काम के लिए पैसा दिया गया है। इसमें हमारी कोई खता नहीं है।
0: मैं तुम्हें कूफा ले जाऊंगा अबा मोहम्मद के पास और वो हुक्म देंगे। उसे कूफा ले चलो।
2: मैंने तुम्हें इसलिए कत्ल नहीं किया कि तुमने मेरा घर जलाया है, बल्कि इसलिए कत्ल किया है कि तुम्हारी वजह से मुझे फर्जंदे रसूल पे शक हो गया था।
0: वल्लाह कि तुम दोनों झूठ और फरेब का नमूना हो। कुफे में रहते हो, सहूलतें राख से हासिल करते हो और शाम के दरिंदे पर जान देते हो।
3: हम किसी पर जान नहीं देते शिमर, इराक के लोगों की भलाई चाहते हैं।
4: वाह वाह वाह, बड़ा लोगों की भलाई का ख्याल आ गया।
3: झूठ और दगलबाजी का कोई चक्कर नहीं, हमारी मुश्किल सिर्फ यह है कि धोखेबाजों को खूब पहचानते हैं।
5: तो अपने आप को पहचानते हो?
3: हमने अपने पड़ोसियों को पहचान लिया है।
0: बकवास बनकर, यहाँ क्या हो रहा है? मैं और मेरे साथी समझते हैं कि आज अबू सुफियान के बेटे को खत्म करने का बेहतरीन मौका है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मखलूक है खुदा ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है और वो कुफे के दरवाजों पे उनके फरमान के मुंतजर हैं। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इत्माम हुज्जत करें और बता दें कि हम हसन इब्न अली से चाहते हैं कि हिंदा के बेटे से जंग का आगाज किया जाए।
6: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही।
0: जंग की पेशकश हम करें।
5: हाँ, इसलिए कि तुम हसन इब्न अली के करीब हो।
0: अशस, तुम करीब तर हो। तुम्हारी बेटी हसन इब्न अली के घर में है, तुम क्यों नहीं कहते?
3: क्योंकि अशस मुनाफिकीन में से है और नहरवान में अली के मुकाबले में तलवार चलाई है, इसलिए उसे शर्म आ रही है। इसे छोड़ो कि किसने इब्न मुलजिम के हाथ में तलवार दी।
0: मक्कार, झूठे,
7: मुनाफिक, धोखेबाज,
5: तिलक घर पे लाना।
8: तुम पे लाना, तुम्हारे पर लाना, नहीं तुम्हारे पर लाना, तुम पे लाना, तुम पे भी लाना, तुम्हारे पर लाना, तुम्हारे पर लाना, तुम्हारे पर लाना, तुम्हारे पर लाना, नहीं तुम्हारे पर लाना, तुम पे लाना।
0: कोई और कुछ कहना चाहता है ताकि हम अबा मोहम्मद तक पहुंचा दें?
3: हाँ, मैं और मेरे साथी, हम कहते हैं कि जंग बहुत हो चुकी, अब मुआविया से सुलह कर लेनी चाहिए।
7: सुलह?
3: क्यों अबा मोहम्मद के चाहने वाले और मुसलमान

0: अब अब्दुल्ला, अभी हम तुम्हारे भाई हसन के घर से आ रहे हैं। उस घर में कोई हमें सही जवाब नहीं देता है।
1: हम लोग तुम्हारे पास आए हैं और चाहते हैं कि तुम हमारे दरमियान कजावत करो।
2: अब अब्दुल्ला, इराकियों से फर्जंदाने हर्ब की पुरानी दुश्मनी है।
0: अगर बनी उमैया इराक पर कामयाब हो गए तो हमारे घरों और बागों को अपने ऊंटों से पामाल कर देंगे।
3: मुसलमानों से परेशान हुई आपने बागात से खौफ ज़दा। आपने बागात से खौफ ज़दा।
0: जब मुसलमान ही नहीं होंगे तो इस्लाम कहाँ होगा?
1: अब अब्दुल्ला, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बाप अली से राजी नहीं थे, लेकिन जब हसन को खिलाफत मिली तो हमने उनकी बैत की, मगर इस शर्त के साथ कि वो माविया से जंग करें।
3: उन्होंने किसी से भी शर्त के साथ बैत नहीं ली थी।
0: अब अब्दुल्ला, हम आज रात आए कि तुमसे अहद करें। अगर माविया से जंग का वादा करो तो तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ दे देंगे। तुम्हारे बाप के बाद हम तुम्हें खलीफा जानते।
4: हाँ, बिल्कुल सही है। क्या कहते हो हुसैन?
3: जब तक मेरे भाई हसन जिंदा है, जब तक मेरे वलियो पेशवा है और उनकी इताअत व बैत पर हूं। और उनकी
0: कहाँ चले अब अब्दुल्ला? ठहरो,
1: चलो चलते हैं।